0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on Narcotics Control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. National testing.

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, देश के सबसे चहेते रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी को इस समय आप सुन रहे हैं और आज मैं हूं सरबजीत कौर के साथ नवीन सक्सेना। प्रोग्राम आज सवेरे।
1: नवीन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। लिसनर्स, टुडे इज 26th ऑफ जून एंड yes, as every day, the next 30 minutes are going to be packed with national and international news, Metro City updates, and of course, historical information, some special personalities to see and understand what makes 26th of June so memorable in the pages of history.
0: सुबह जब इतनी खूबसूरत हो तो मन करता है कि बस ढेर सारी बातें होती चली जाएं, और ऐसी बातें जो दिन भर के लिए आपको तैयार कर दें। और सरबजीत ने कहा कि देश विदेश की खबरें होंगी, लेखा जोखा होगा आपके शहर का, मौसम की बातें होंगी, खेलों की दुनिया की बातें होंगी। तो इन तमाम खबरों को एक पोटली में बांधकर अगले आधे घंटे के लिए हम आपके साथ हैं। रेडियो सेट को थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपकी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। डाल लेते हैं नजर अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है देश विदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: International Monetary Fund, IMF, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices. Addressing a regular IMF press briefing, Julia Kozak, director of IMF's communications department, said India's economy has remained resilient despite external headwinds supported by robust domestic demand. The IMF said it continues to project India's economy to grow by 6.5% in fiscal year 2026-27, maintaining the upward revision made in April. She said the forecast reflected strong momentum carried over from last year and the reduction in US tariff rates, which helped cushion the impact of the global energy shock. Kozak said India's economy had continued to outperform expectations during the first quarter of the calendar year.
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ

0: खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। इस प्राथमिकी में अपराध संख्या 90/2026 में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल हैं।
1: The government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to pre-West Asia crisis levels, providing relief to industrial and commercial consumers. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said bulk LPG supplies suspended during the West Asia crisis have been restored to 50% of pre-crisis consumption levels following an improvement in the supply situation. The government has also reduced the diversion of C3-C4 streams to LPG production, allowing more supplies for petrochemical and downstream industries while maintaining domestic LPG production at no less than 40,000 metric tons per day. The ministry said oil marketing companies will continue maintaining data on commercial and industrial LPG consumers to improve supply planning.
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
1: Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez has announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital, Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. The coastal region of La Guaira, north of the capital, Caracas, suffered the heaviest damage and casualties. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodríguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodríguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice.
0: और पलटते हैं एक और पन्ना और बात खेलों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जो मैच हुआ, उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए और जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 53 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। और सरजीत, अब पूरा विश्व इस समय फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ है, तो बस फुटबॉल की ताजा तरीन जानकारी के साथ मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता की नॉकआउट में जगह बना ली है। फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के मैच में आइवरी कोस्ट के निकोलस पेपे ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। अमरीका के न्यू जर्सी में हुए इस मैच में जीत हासिल कर इक्वाडोर ने अगले राउंड में पहुंचने की संभावनाएं बरकरार रखी हैं। इससे पहले मोंटेरी में दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया।
0: ये थी अब तक की ताजा तरीन खबरें और अब नजर डाल लेते हैं आपके शहर में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले चेन्नई।
1: Well, Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay flagged off 300 new buses inducted in the Metropolitan Transport Corporation and 7 other transport corporations at the State Secretariat campus on Thursday. He also boarded a bus from Anna Square to Perambur. He travelled along with some officials and the Transport Minister. The buses were procured at a cost of around 127 crore rupees. Of the 300 buses, 164 will run on diesel, while

0: CNG will fuel the remaining 136 buses. As many as 65 buses will be added to the fleet of MTC. Viluppuram Corporation will get 36 buses. Salem, Coimbatore, Kumbakonam, Madurai and Tirunelveli corporations will get the remaining buses. Three men were arrested in Triplicane after police unearthed an illegal network involved in procuring and stockpiling prescription pain relief and sedative tablets for smuggling to foreign countries. The police seized 55,280 tablets during the operation and remanded the accused in judicial custody. Police said the accused were couriering the tablets from Delhi to Chennai, from where they were prepared for shipment abroad. And Naveen, what's the update from Delhi?
1: सरबजीत, बच्चों के भविष्य की नींव विद्यालय यानी स्कूल से रखी जाती है, और स्कूल अगर आधुनिक होंगे, सुसज्जित होंगे, तो बस फिर पढ़ने में और भी मजा आ जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, और इसके लिए वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सुनते हैं सकलेन की रिपोर्ट।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकलेन अख्तर।
1: एनडीएमसी ने कल राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि यह एनडीएमसी की 9वीं अनुपम कॉलोनी है।
3: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: और सरबजीत, ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी सेंस हमारे अंदर होती है, लेकिन सरबजीत एक शब्द है जिसे कहते हैं सिविक सेंस, ये बहुत जरूरी है।
0: एंड नवीन, इट वुड बी यू नो इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस कैन नॉट मेक द डिजायर्ड चेंज इन द सोसाइटी। वी एज सिटीजंस हैव टू डू आवर बिट, वी हैव टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली।
1: बिल्कुल, सरकार आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवा सकती, सरकार सिर्फ बता सकती है, लेकिन आपकी सिविक सेंस, आपने अब तक जो पढ़ा उसके अनुसार काम कीजिए, देखिए आपका शहर भी स्वच्छ हो जाएगा ना।
0: एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इज टीम वर्क ऑल अबाउट।
1: यस, अब चलते हैं बेंगलुरु की ओर।
0: इन अ मेजर बूस्ट टू द नेशंस एयरबोर्न सर्विलेंस एंड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, द इंडिजिनस नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWNC, डेवलप्ड बाय DRDO, रिसीव्ड इट्स फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इन बेंगलुरु यस्टरडे। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, फॉर्मर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ मार्शल RKS भदौरिया, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिक्स क्लस्टर ऑफ DRDO, डॉक्टर के राजालक्ष्मी मेनन, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर P. Santhya and former chairman of DRDO, Dr. S. Christopher, attended the grand ceremony. Speaking on the occasion, Air Marshal Bharti emphasized on the importance of Netra AEWCs during the Balakot airstrikes and Operation Sindoor. The system provided the Air Force enhanced airborne surveillance, advanced situational awareness and battle management capabilities. Karnataka Chief Minister D.K. Sivakumar inaugurated the 33 spillway gates of the Tungabhadra Dam in Koppal district of the state yesterday. Addressing the gathering on this occasion, Sivakumar said that it is a historic event for South India, benefiting the farmers of three states of Karnataka, Andhra and Telangana. He announced that the chief ministers of three states have taken a historic

0: historic decision on desilting of the dam bed and building the Neyveli parallel reservoir, which will help save 33 TMC of water in the dam. And Naveen, what's the update from Mumbai today?
1: मुंबई में पालघर जिले में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका लगाना है। जिले में इस अभियान के लिए टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए हैं और जिन बच्चों का टीकाकरण उस दिन नहीं हो पाएगा, उन्हें 28 से 30 जून तक घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से टीका लगाया जाएगा। बात हैदराबाद की।
0: The Election Commission of India has officially launched the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls across Telangana to clean and update records for the registered electors across 119 assembly constituencies. This comprehensive door-to-door enumeration drive involves booth-level officers distributing pre-printed forms to almost 35,000 polling booths. District collectors have entered active field mode to enter the month-long drive. In Hyderabad, District Election Officer and GHMC Commissioner R.V. Karnan inspected the process in Jubilee Hills, noting that over 25 lakh electors remain unmapped out of around 47 lakh voters.
1: बात कोलकाता की। मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। उत्तरी बंगाल के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। उत्तर बंगाल के उपहिमालयी जिलों में बारिश बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, हावड़ा और हुगली जिलों में बिजली गिरने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। और सरबजीत, अब बिना देर के बात करते हैं उस चीज की जो आज आपके दिन भर का प्लान तय करेगी, यानी मौसम का हाल।
0: जी बिल्कुल, लेट्स बिगिन विद द अपडेट फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन 29 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम मे गो अप टू 39 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru will experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may go up to 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see thunderstorm accompanied with lightning. Temperatures may hover between 24 degrees to 33 degrees Celsius.
1: वापस लौट कर आते हैं दिल्ली की ओर, तो दिल्ली वालों, आज अपने साथ छाता रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मौसम कह रहा है कि आज मैं बदलने वाला हूं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और सरबजीत, जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री, ज्यादा डिफरेंस है तो गर्मी सर्दी दोनों का एहसास होगा।
0: बिल्कुल।
1: बात माया नगरी मुंबई की। मुंबईकर्स, आपके लिए मॉनसून में रफ्तार में तेजी बनी हुई है। आज मुंबई और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तटीय इलाकों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि लहरें तेज होने की संभावना है। तापमान 33 और 28 के बीच रहेगा। बात कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय, जो अगर आप हमें वहां सुन रहे हैं तो मानसून की एंट्री हो चुकी है। कोलकाता में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। उमस थोड़ा परेशान करेगी और मौसम खुशनुमा बनाए रखेंगे, यानी कुल मिलाकर तीनों बड़े महानगरों में आज पानी की बूंदें मुस्कुराने वाली हैं। तो ये थे आपके शहर का मौसम। जीत हर दिन अपने आप में खास होता है, तो आज की तारीख क्या कहती है?
0: जी, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यू नो द इम्पॉर्टेंट डेज विच मार्क्ड इन हिस्ट्री एंड मेक 26th ऑफ जून सो मेमोरेबल, सो इम्पॉर्टेंट। वेल, ग्लोबल ड्रग यूज एंड द नंबर ऑफ ड्रग्स ऑन द मार्केट हैव बीन इंक्रीजिंगली इन द पास्ट डेकेड्स। द सेंचुरी लॉन्ग डोमिनेंस ऑफ हेरोइन इन इलिसिट ग्लोबल ओपियड मार्केट इज इंक्रीजिंगली बीइंग चैलेंज्ड बाय चेंजेस इन द इलीगल सप्लाई ऑफ ओपियड्स, एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे against drug abuse. Production, seizures and use of cocaine continue to rise, while low costs of manufacture and reduced risk of detection of synthetic drugs are contributing to the increase on illicit drug markets.

0: trafficking groups are seeking out technological innovation to target new audience and ensure that drugs increasingly reach their users and help boost their billion-dollar businesses. So more important, you know, that we ensure that artificial technology and the latest tools of technology are not used in this heinous crime. The next day that we are observing today is the International Day in Support of Victims of Torture. On 12th of December in the year 1997, the UN General Assembly proclaimed this day with a view to the total eradication of torture and the effective functioning of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
1: तो ये थी वो घटना या ये थी वो बातें जो बता रही थी कि आज का दिन क्यों खास है. लेकिन हर दिन अपने आप में और भी खास होते हैं क्योंकि इतिहास जुड़ा होता है. तो सरबजीत किस साल में हमें लिए चल रही हैं?
0: 1945, 26th of June, delegates from 50 nations signed the United Nations Charter, establishing the world body as a means of saving succeeding generations from the scourge of war.
1: बात 1954 की. भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने नई दिल्ली में पड़ोसी प्रथम और पंचशील सिद्धांतों के पालन की साझा प्रतिज्ञा ली थी.
0: 1974, on this day, a pack of Wrigley's Juicy Fruit Chewing Gum became the first grocery item scanned with a Universal Product Code or UPC at a supermarket in Troy, Ohio.
1: 1975 वो आज ही का दिन था जब आपातकाल की क्रूर शुरुआत हुई थी. 25 जून की आधी रात को आपातकाल की घोषणा के बाद 26 जून 1975 यानी आज ही के दिन देश में नागरिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए गए थे.
0: 1979, on this day, after almost 20 years of professional fights, heavyweight champion Muhammad Ali announced his retirement from boxing.
1: 1992 आज के दिन भारत ने अपनी सीमा का विवादित 3 बीघा गलियारा क्षेत्र 999 वर्षों के पट्टे पर बांग्लादेश को सौंप दिया था जिससे दोनों देशों के सीमा संपर्क में सुधार हुआ था. आज ही के दिन 1997 में हैरी पॉटर श्रृंखला की भी शुरुआत हुई थी. पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन आज ही के दिन ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था जिसने साहित्य के इतिहास के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. और अब बात उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से.
0: नवीन, वील बिगिन दिस सेगमेंट विद पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट नारायण श्रीपद राजहंस, आल्सो पॉपुलरली नोन एज बाल गंधर्व. He was a famous Marathi singer and stage actor. He was known for his roles as female characters in Marathi plays, as women were not allowed to act on stage during his time.
1: बाल गंधर्व एक ऐसे कलाकार जिसने न सिर्फ महिला चरित्रों को निभाया स्टेज पे बल्कि बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग भी की. आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में एक ये भजन.

0: Yes, listeners, today is the birth anniversary of the great Bankim Chandra Chattopadhyay, the Bengali novelist, poet, essayist and journalist.
1: Bankim Chandra Chattopadhyay, Bankim Chandra Chatterjee, जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के कांठलपाड़ा गांव में हुआ था. पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी. उस समय भारत की दुर्दशा को लेकर उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी और सरबजीत अपनी इसी टीस को उन्होंने अपनी कलम की ताकत बनाया. आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी, इस तरह के कालजी उपन्यासों की रचना की. उनकी सबसे बड़ी देन है अमर गीत वंदे मातरम. ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था और वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है.
0: In fact, Naveen, you know, Bankim Chandra is also known as the Sahitya Samrat or the Emperor of Literature in Bengali.

बंकिम चंद्र 8 अप्रैल 1894 को हमसे विदा हो गए, लेकिन उनके विचार और वंदे मातरम के रूप में उनका अमर संदेश हमेशा हमारे दिलों में धड़कता रहेगा। और इस खूबसूरत गीत को जो आप सुन रहे हैं, ये फिल्म आनंद मठ का हिस्सा है।

0: आज जयंती है कोल्हापुर रियासत के महान समाज सुधारक और राजा जिन्होंने भारत में सबसे पहले दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति की शुरुआत की थी, नाम छत्रपति शाहू जी महाराज। और आज ही तापमान के केल्विन पैमाने यानी जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं, उसकी खोज करने वाले महान ब्रिटिश गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी विलियम थॉम्सन का भी जन्म हुआ था।
1: Listeners, we are also remembering today Major Rama Raghoba Rane, the Indian military officer who was the first living recipient of India's highest military decoration, the Paramveer Chakra, which he was awarded along with Karam Singh. Born in 1980, Major Rane served in the British Indian Army during the Second World War, and he remained in the military during the post-war period and was commissioned in the Bombay Sappers Regiment of the Indian Army Corps of Engineers on 15 December 1947. In April 1948, during the Indo-Pakistani War, Rane played a key role in the capture of Rajouri by Indian forces by being instrumental in clearing several roadblocks and minefields.
0: सरबजीत, सब मानते हैं और जानते भी हैं कि भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान रही है। इस देश का मानव इन दो तत्वों से ही बना है। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वामी जी अपना नश्वर शरीर त्याग कर महाप्रयाण कर गए थे। स्वामी सहजानंद के रूप में हम एक ऐसे युग पुरुष सन्यासी को आज याद कर रहे हैं जिसने अपना जीवन देश की आजादी और किसानों की भलाई के लिए होम कर दिया था। स्वामी जी ने नारा दिया था जो किसान आंदोलन के दौरान बहुत चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन भी वही चलाएगा। परमार्थ चिंतन के परंपरागत मूल्यों से एकाकार होते हुए उन्होंने उस समाज में भगवान का दर्शन किया जिसे हम किसान कहते हैं। किसानों के भगवान कहे जाने वाले युग दृष्टा जननायक दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन त्याग और संघर्ष की प्रतिमूर्ति बने रहे।
1: Listeners, today is the death anniversary of Carl Lanster, an Australian-American biologist, physician and immunologist. Carl distinguished the main blood groups in the year 1901, having developed the modern system of classification of blood groups. In the year 1930, Carl received the Nobel Prize in Physiology, and he was posthumously awarded the Lasker Award in 1946 and has often been described as the father of transfusion medicine.
0: आज फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे भीष्म पितामह को याद करने का दिन है जिन्होंने पर्दे पर भव्यता और पारिवारिक रिश्तों को बड़े खूबसूरत ढंग से पुराया। आज मशहूर निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर की भी पुण्यतिथि है।
1: Yes, absolutely. You know, the great films, दोस्ताना, दुनिया, मुकद्दर का फैसला and कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, you know, these are the great names which come to my mind when you talk of यश जौहर।
0: Yes. सरबजीत, जब भी भारतीय सिनेमा में बड़े पैमाने की रंग बिरंगी और दिल को छू जाने वाली फिल्मों की बात होगी, यश जौहर का नाम सबसे ऊपर आएगा। और आपको याद है एक फिल्म आप भूल गए, अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर अग्निपथ, उसे भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था।
1: एंड नवीन, यू नो, यश जौहर इज सो फॉन्डली एसोसिएटेड विद लैविश सेट्स, एग्जॉटिक लोकेशंस एंड एज यू राइटली सेड, एम्फेसिस ऑन इंडियन ट्रेडिशन एंड फैमिली वैल्यूज।
0: 26 जून 2004 यानी आज ही के दिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन अपनी सदाबहार फिल्मों और गानों के जरिए आज भी सिने प्रेमियों के दिल में बसते रहेंगे। तो यश जौहर साहब को याद करते हुए उनकी एक फिल्म है कल होना हो, द ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक के साथ हम आपको छोड़ते हैं।

0: और अब चलते चलते मैं नवीन और सरबजीत आपको आज के खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं।
1: Very well said, Naveen. And with these great words, listeners, we leave you in the program Aaj Savere. But you stay tuned, for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: करते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए NEET UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष

0: आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद

0: just awesome na. No tension, bebe.
1: தொடரும் பாடலை கேட்கும் முன்
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
1: திரைக்கானத்தில் அடுத்து பாரதிய சேனா
5: நமஸ்கார் மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை பாராமிலிட்ரி கே அர்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं मैं हूं आपका कैलाश खेर
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना हर संकट का समाधान है भारतीय सेना भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई।

0: रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living.

0: के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क

0: कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभीढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। दूसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Prime Minister Modi to

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: நேரம் 10:41, 25 நொடி. எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் சுகுமான ராகங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து என் ராசாவின் மனசிலே படத்திற்காக ஒலிக்கும் குரல்கள். எஸ் என் சுரேந்தர், சித்ரா.

0: ஒலித்த அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की. बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं

चर्चा चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from tomorrow to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 12:12 40 நொடி. எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் திரைகானம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து ஒளிவிளக்கு படத்திற்காக ஒலிக்கும் குரல்கள். டி எம் சவுந்தரராஜன், பி சுசீலா.

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के

जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।

महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना

0: की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60

0: हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने

0: साहू को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
2: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு. நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்டு ரசிக்கலாம் திரை காணும் நிகழ்ச்சியின் முதல் பாடல், கிழக்கே போகும் ரயில் படத்திலிருந்து பி ஜெயச்சந்திரன் பாடியிருப்பது.

0: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం సాయంత్రం 4 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే ప్రశాంత్ కుమార్. गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई. ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है. इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा. एक रिपोर्ट.
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे. इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा. मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है. अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी.
1: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है. बचाव अभियान जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है. वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर

योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: துவக்கமாக தெற்கு தெரு மச்சான் திரைப்படத்திற்காக எஸ் ஜானகி பாடியுள்ள பாடல்.

0: निरेवाग।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर जम्मू प्रतिनियुक्ति आधार पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सैनिटेशन ऑफिसर, सीनियर फार्मासिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अन्य विवरण, आवेदन पत्र, नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए एम्स जम्मू की वेबसाइट www.aimsjammu.edu.in। नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब आमंत्रित कर रहा है प्रधानाचार्य के एक पद को भरने के लिए। आवेदन, प्रतिमाह वेतन रहेगा 1,44,200 रुपए समेकित। योग्यता और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.niiftiindia.com। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रधान निजी सचिव के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नियम, शर्तों, योग्यता, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। मास्टर गजेटेड पीजीटी पदों की संख्या 1 है। वांछनीय योग्यता है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अध्यापन का 3 वर्ष का पूर्व अनुभव। एक पद स्कूल काउंसलर असिस्टेंट मास्टर का है जिसके लिए उम्मीदवार को होना चाहिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में दक्षता, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर न्यूनतम सहभागिता, खेलों में भागीदारी और कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान भी उम्मीदवार को होना चाहिए। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की वेबसाइट और ईमेल कर सकते हैं इस पते पर principal@gmail.com। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर Grade 1 और सहायक प्रोफेसर Grade 2। इन भर्तियों के लिए विभाग, विशेषज्ञताएं और पदों की संख्या की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विभाग और विशेषज्ञताएं इस प्रकार हैं: सिविल इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू तकनीकी इंजीनियरिंग और परिवहन इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और स्वचालन, उपकरणन और नियंत्रण तथा मैकाट्रॉनिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, विद्युत इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI तथा संचार और संकेत प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में VLSI परीक्षण, वास्तुकला और चिप डिजाइन, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विज्ञान और बिग डेटा, प्रणालियां और वास्तुकला, वित्तीय गणित तथा क्रिप्टोग्राफी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त, प्रबंधन अध्ययन में मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और संचालन तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं recruitment.nits.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मनोज। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और कार्यक्रम के आज के अंक में उन खास व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
2: Namaskar, Sir Firozi, and a very warm welcome to all the listeners who have tuned into our news magazine program, Parikrama. In this program, we'll remember those personalities who were born on those who died on this day, that is the 26th of June, which is the 177th day of the year. In addition, we'll provide you with a roundup of national, regional, business and sports news. Sir Firozi, let's begin with the headlines first.
1: Ji Manoj. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट 8 पीपल इन कनेक्शन विद राम मंदिर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस।
1: भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना।
2: Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram.
1: T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें।
2: And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about a very sensitive topic, as it is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Every year, that is on 26th of June, the world observes the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Established by the United Nations, this day is a global call to strengthen action and cooperation in building a society free from drug abuse and illegal drug trafficking. This year's observance, Sarfirozi, reminds us that the fight against drugs is not only about enforcing laws, it is also about protecting lives, preserving families, empowering young people, and of course, securing the future of our nation.
1: बिल्कुल मनोज, और आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से एक है नशीली दवाओं का दुरुपयोग। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, अपराध को बढ़ावा देता है, आपसी रिश्तों को कमजोर करता है, शिक्षा में बाधा डालता है और प्रोडक्टिविटी भी इससे घटती है। इसकी वजह से युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, वो युवा जो किसी देश के भविष्य के असली नींव होते हैं।
2: And Sarfirozi, we've also come across viral videos on zombies, people acting like zombies, and recognizing this threat, the government of India has also adopted a zero tolerance policy towards drugs. Instead of relying solely on enforcement, the government is pursuing a comprehensive strategy that combines prevention, public awareness, rehabilitation, and strict action against drug traffickers. The vision is to transform the fight against drugs into a Jan Andolan, a nationwide people's movement in which not just us, but every citizen, every family, every educational institution, and every community becomes an active partner in creating a drug-free India.
1: बिल्कुल मनोज, और इस पहल के

0: अच्छे नतीजे भी हम देख पा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी समेत पूरे भारत में कई एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए की कीमत के गैर कानूनी ड्रग्स जब्त किए। ये 2023 में जब्त किए गए 16,100 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तुलना में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है। वहीं अधिकारियों ने सिंथेटिक ड्रग्स और ऐसी फार्मास्यूटिकल दवाओं की जब्ती में तेजी से बढ़ोतरी की जानकारी दी है जिनका साइकोट्रॉपिक पदार्थों के तौर पर गैर कानूनी रूप से गलत इस्तेमाल किया जाता है।
1: And said Firozi, what really makes these drugs dangerous is that they're highly addictive, often easier to transport, distribute, and can have devastating effects on both physical and mental health. The increase in seizures reflects stronger intelligence sharing, better coordination among enforcement agencies, and intensified operations across the country. In a major step towards eliminating the drug menace, agencies in 2024 achieved the country's biggest offshore drug seizure. Under the leadership of the Ministry of Home Affairs, a whole-of-the-government approach is being adopted to dismantle drug networks and bring perpetrators to justice.
0: बिल्कुल मनोज, और इसी क्रम में नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के दुरुपयोग को एक ऐसी चुनौती बताया जो सिर्फ लत तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हित और भारत के युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकती। एकजुट प्रयासों का आह्वान करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, माताओं और हर जिम्मेदार नागरिक से अपील की कि वे मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जो ड्रग्स को नकारे और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें। उनका संदेश साफ था, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: And we've told you, listeners, about dangers of drug abuse. But dear listeners, the question that you might be thinking or that might be rearing in your head is, what is our strongest weapon? And our strongest weapon certainly is awareness. Many young people fall into drug abuse due to probably curiosity, peer pressure, stress, misinformation that it gives you a certain high, or emotional challenges as sort of a resort to these drugs. But every informed decision has the power to prevent addiction before it begins. Parents can create an environment of trust and open communication. Teachers can educate students about the dangers of substance abuse. Friends also can encourage one another to make healthy choices. And as a whole, communities can support rehabilitation instead of stigma, helping those affected return to a productive life. And remember, listeners, addiction is not just an individual struggle. It affects entire family, your friendships, your workplaces, and of course, the entire community.
0: बिल्कुल श्रोताओं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हुए हमें ये भी याद रखना है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। जैसा कि मनोज ने बताया, इसके लिए जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। नशीली दवाओं के खतरों के बारे में हर चर्चा, हर युवा जो नशे की लत के बजाय सेहत को चुन रहा है, हर परिवार जो इन प्रयासों में सहयोग दे रहा है और हर नागरिक जो नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ खड़ा है, ये सब हमें सुरक्षित और मजबूत भारत की ओर एक कदम और करीब ले जा रहे हैं।
1: And before we wrap up this segment, we would not like to wrap up this segment with just information and information on drug abuse. Let's take a very simple pledge together. I pledge to stay away from drugs, spread awareness about their harmful effects, support those seeking help, and contribute towards building a healthy, safe, and drug-free India. Remember, the greatest achievements in life come from determination, hard work, and healthy choices, not from addiction. Stay informed, stay healthy, and always remember, say yes to life, yes to dreams, and no to drugs. To all the young listeners who have tuned in today to listen to our program Parikrama, remember that drugs are never a symbol of being cool. They only steal your health, dreams, and future. Real confidence comes from making wise choices, pursuing your passions, and staying

0: श्रोताओं, अभी हमने सुना राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर से पहले हुए बांग्ला साहित्यकारों में इनका अग्रणी स्थान है। इनका पहला प्रकाशित रचना थी राजमोहन्स वाइफ। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई। इनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति थी दुर्गेश नंदिनी, जो मार्च 1965 में छपी। वहीं आनंद मठ इनका राजनीतिक उपन्यास है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आत्म बलिदान का आदर्श और देशभक्ति का महत्वपूर्ण मंत्र प्रचारित किया।
1: June 26 is a day of remembrance for Ford Madox Ford as well, the architect of modern storytelling. He died on this day in 1939. Ford was an English novelist, editor and critic, an international influence in early 20th century literature. Ford was born in Surrey, England in 1873. His novel, The Good Soldier, allowed memory, emotion and uncertainty to shape the narrative. The tetralogy titled Parade's End, published during the 1920s, drew upon his own experiences of the First World War. The novel painted a powerful portrait of a society transformed by conflict and remains among the finest literary works inspired by the Great War.
0: और अब हम आपको बॉलीवुड के उस सितारे के बारे में बताएंगे जिसने हिंदी सिनेमा जगत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनकी सिनेमाई ताकत और कहानियों ने कई सितारों को चमकाया। हम बात कर रहे हैं यश जौहर की। यश ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स से की, जहां उन्होंने मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में सहयोगी के तौर पर काम किया। इसके बाद वो देवानंद की नवकेतन फिल्म से जुड़े, जहां उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी क्लासिक फिल्मों में प्रोडक्शन का जिम्मा संभाला। और भी कई जानकारी देंगे यश जौहर के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको उनके एक इंटरव्यू का छोटा सा अंश सुनाते हैं जिसमें वो प्रोडक्शन के गुण बता रहे हैं।
2: काफ़ी साल से प्रोडक्शन में रहा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में, वो थी मेहनत और ईमानदारी और सिंसेरिटी ऑफ वर्क। ये चीज़ें जो थी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। तो अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में, एक बहुत थैंकलेस जॉब है, इससे बेट वर्स जॉब कोई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक प्रोडक्शन मैन इज एन ऑलराउंडर।
1: These experiences laid the foundation for a remarkable career behind the camera. In 1976, Yash Johar established Dharma Productions, a company that would go on to become one of India's most successful film studios. Its first production, Dostana, released in 1980, was a major box office success. Over the following decades, Dharma produced memorable films including Agnipath, Gumrah, Duplicate, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham and Kal Ho Na Ho. Let's listen to a few songs from his movies.

0: His films became known for their emotional storytelling, strong family values, lavish production design, and unforgettable music.
1: और भारत की ग्रामोफोन गर्ल के नाम से मशहूर गौहर जान की भी आज जयंती है. गौहर ने गायन और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली. 1888 में गौहर ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और उन्हें दरभंगा राज के शाही दरबार में दरबारी संगीतकार नियुक्त किया गया.
0: Born as Angelina Yovard in Azamgarh in present-day Uttar Pradesh, Gauhar Jaan came from a culturally diverse background. Listeners, one account says that she used to charge 3,000 rupees per song when the price of gold was 20 rupees per tola.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला

सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो एक बात सुनाओ। झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आप संजीव अग्निहोत्री, आपके साथ रहूंगा उस महफिल में जिसका नाम है सदाबहार गीत। वक्त हुआ है 6:10 24 सेकंड।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: प्यार है,
1: पापा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों की महफिल यहीं पर। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

0: अयोध्यायाः राममन्दिरदानराशिस्ते प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक्सिलिका सन्धौ कृत्रिमबुद्धिमत्ता आपूर्तिशृङ्खलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः, युवभ्यः, मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभाम् अभिसम्बोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरुत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 लक्ष किलोग्राममितं 26 लक्ष किलोग्राममितं गृहीतानि संश्लेषितमादकद्रव्याणि 18.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणाम् अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदानप्रदानार्थम् अनेकानि आन्लैन् पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादकद्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्यमन्त्रिणः बी.एल्.वर्मणः लेखं विनिमयी कुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तरप्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशिस्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेषनिरीक्षणदलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च स्तेयसम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः

0: have an impact. There was an impact in the short term. All of us felt it, not only in India, but every other country, rather every other country, much more than India. And that is where the cautionary note comes into play, because that effect will be felt for a little bit of more time, although there will be the absorption of the aftershocks in terms of the steps which are being taken, or in terms of the way the overall economic structure behaves and works. But largely, at the end of the day, what it comes to is the fact that the fundamentals have to be resilient. And as far as Indian economy is concerned, when we look at all the parameters, be it various sectors, the manufacturing, the services, the agriculture, the way the stock market has behaved as well, the kind of steps which have been taken by the central bank also in terms of its monetary policy, the kind of economic policy steps which have been taken by the government, they all go on to indicate to the investors and to the to the larger world outside that yes, everything is hunky-dory here. There's nothing much to worry about. Of course, if it's a global crisis, everybody will feel the pinch. We will also feel a little bit of it.
1: Right. Weather-related uncertainties, sorry, Sonu. Weather-related uncertainties is also something which is figured in.
0: Yes, weather do play a very important part, and agriculture sector in India is still very monsoon dependent, just like many other countries across the world as well. So of course, and it is a very important sector in our economy. So largely the way it was being predicted, it was being pointed out as far as monsoon is concerned, that was not a very, very rosy picture. But I think that situation has also started to change now. I think the last I read, I believe here in National Capital Region only, we should get the first monsoon showers in the first week of July, which is not too late than what the usual term is. And if that's the case here, then across the country as well, we might feel the pinch somewhere, in terms of some dry regions or some regions not receiving that much rainfall as is expected. But yes, weather do play an important part, and that might be something which Goldman Sachs or others would have considered. But largely, I would say it's the overall impact, the dent which was there, which all of us felt for almost 100 odd days. That is something which will pinch us a little bit more, not much.
2: So, विशाल जी, IMF की जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी जो बताया है कि भारत की इकोनॉमी का जो प्रोजेक्शन है, वो उन्होंने फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए 6.5% पर बरकरार रखा है. और जो उन्होंने रीजंस बताए हैं इस मजबूती के लिए, एक तो स्ट्रांग मोमेंटम जो पिछले वर्ष से आया है, और दूसरा रिडक्शन इन US टैरिफ रेट्स. सो आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रही है फाइनेंशियल और मॉनेटरी लेवल पर भारतीय इकोनॉमी की, उसने हमें इस समय पर मजबूती से डील करने में हेल्प किया है? कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को?
0: देखिए, IMF की जो प्रडिक्शन है उसे थोड़ा सा इंटरिम प्रडिक्शन हम इंटरिम आउटलुक कह सकते हैं, क्योंकि लार्जली IMF का जो ग्लोबल आउटलुक आएगा वो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में
2: जी
0: आता है,
2: जी
0: और उसमें थोड़ा सा और डिटेल्ड उनका एक्सप्लेनेशन होगा कि वो जो भी उन्होंने कहा है वो उसको किस तरह से देखते हैं. लेकिन ये बातें सही हैं, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि कारण सबके लिए वही है, क्योंकि चाहे उसको आउटलुक को IMF तैयार करे या गोल्डमैन सैक्स तैयार करे या हमारा खुद का सेंट्रल बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो तैयार करे, दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं. सबसे पहला तो जो मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसका जो असर रहा है एनर्जी सेक्टर पर खास तौर पे. अब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे ज़रूर आ गए हैं, लेकिन अगर हम प्री वॉर लेवल्स के लिहाज से देखें तो लगभग 8 से 10% अभी भी ऊपर ही हैं. तो एक तो उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि परफॉर्मेंस असल में एक कंसिस्टेंसी, जिसकी बात की आपने, IMF ने जो कंसिस्टेंसी की बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इकोनॉमिक आउटलुक. अब जब हम देखते हैं या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, और चाहे उसे सेक्टर दर सेक्टर देखें या फिर एक ओवरऑल
2: जो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, उन्होंने जैसे फर्स्ट
0: जी
2: क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर भी
0: बिल्कुल
2: कहा है कि आउट परफॉर्म किया है हमने.
0: अब मैं तो थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाऊंगा, और वो भी आंकड़े हम देख सकते हैं. अब कोविड के बाद से जिस तरह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो परफॉर्मेंस रहा है भारत का, और खासतौर पे अगर हम उसे कंपेयर करें इंटरनेशनल सिनेरियो से, तो वो एक कंसिस्टेंसी जरूर है. कभी

0: 0.5% ऊपर, कभी 0.5% नीचे, वो बात अलग है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन हुई है, उस कंसिस्टेंसी के चलते जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब मजबूत नहीं मानी जाती जब वो किसी एक क्वार्टर में 10% ग्रो करे और दूसरे क्वार्टर में 4% ग्रो करे। अगर कोई कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है, केवल एक या दो सेक्टर पर ये जो ग्रोथ है वो निर्भर नहीं है।
1: जी, और जैसा आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को भी रिलीफ मिला है और वापस वो जो सप्लाई है उसको रिस्टोर करने के स्टेप्स,
0: ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि ये एक जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान ये एक बड़ा फैसला था भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इंश्योर करना था कि जो सप्लाई है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए सप्लाई है, उसमें कोई किसी तरह की रुकावट ना पेश आए। इसलिए जो कमर्शियल एलपीजी सप्लाई थी उस पर कुछ कुछ कटौती लगाई गई, कुछ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और अब उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना ये इंडिकेट करता है कि गैस की आपूर्ति में, यानी कि जो एलपीजी गैस है उसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। दूसरा, जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसको फिर से दुरुस्त कर लिया गया है। और तीसरा, इससे सीधे सीधे तौर पर जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उनको सीधा फायदा पहुंचेगा, और वहां जो खपत होगी वो सीधे तौर पर इकोनॉमी को मजबूत करेगी।
1: बिल्कुल, और आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज गिरावट आई। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मंदी से निवेशक परेशान थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूलभूत ढांचे की बढ़ती लागत पर चिंताएं गहराने के बीच टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हुई भारी बिकवाली के बाद दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 5.8% लुढ़क गया। सत्र के दौरान एक समय कॉस्पी 8% से अधिक गिर गया था, जिसके चलते कोरिया एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाकर 20 मिनट के लिए कॉस्पी में शामिल शेयरों का कारोबार रोक दिया। ये इस सप्ताह कारोबार में दूसरी बार रोक लगाई गई है। उधर जापान का निकेई 225 4.1% से अधिक गिर गया। ताइवान का ताइएक्स 3.6% से अधिक के नुकसान में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग 2.3% की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में करीब 1.8% की गिरावट आई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांक भी दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक गिरावट पर चल रहे थे। जर्मनी का डैक्स 1.1%, लंदन का फुटसी 100 लगभग 0.9% और फ्रांस का कैक 40 0.8% के नुकसान पर थे। आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, कॉस्पी में जो हमने देखा है इस सप्ताह 16% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। आज सर्किट ब्रेकर लगा, इस सप्ताह पहले भी एक बार सर्किट ब्रेकर ट्यूसडे को लग चुका है, तो कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? क्या ये बहुत चिंताजनक है?
0: देखिए, थोड़ी सी तो चिंताजनक है, क्योंकि जो इतने बड़े प्लेयर हैं खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, उनके शेयर्स में इस तरह से भारी गिरावट आना, बिकवाली होना, वो एक चिंताजनक पहलू जरूर है। लेकिन इसके पीछे के कारण जो है उनको थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर रोज़ कुछ नई डेवलपमेंट होती है, और कई बार वो डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है, कई बार वो डेवलपमेंट नेगेटिव भी मानी जाती है। इसके असर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो दिख रहा है, एक टर्म का इस्तेमाल हुआ था जो कि आजकल बहुत लिखा जा रहा है, जिसके बारे में मेमफ्लेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उससे संबंधित ज़रूर है। मेमोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेमोरी का इस्तेमाल, मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल, उसके चलते जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का एआई सेक्टर में थोड़ा
1: जिसके
0: सा
1: चलते एप्पल की प्राइसेस,
0: बिल्कुल
1: प्रोडक्ट्स की प्राइसेस।
0: देखिए, ये इसमें एक थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन अगर समय की इजाजत हो तो मैं जरा एक मिनट में अपने श्रोताओं को जरूर समझाना चाहूंगा कि मोटे तौर पर जो हम मोबाइल फोन्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम मेमोरी चिप इस्तेमाल होती है, वो मेमोरी चिप और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जो जो सर्वर्स हैं या जो एआई का इस्तेमाल जहां होता है वहां पर जो मेमोरी चिप इस्तेमाल होती है उसको एचबीएम कहा जाता है, और उसको उसका स्पेस लगभग 2/3 ज़्यादा, मतलब उसको 2/3 ज़्यादा मेमोरी चिप्स की ज़रूरत है नॉर्मल मेमोरी चिप से। तो क्योंकि एआई पर

0: India's foreign exchange reserves rose by $963 million to over $672 billion during the week ended June 19th, according to the Reserve Bank of India data. The rise was mainly driven by a sharp increase in gold reserves, which increased by $4.1 billion to over $107 billion. In contrast, foreign currency assets, the largest component of the reserves, decreased by $3.07 billion to $541 billion during the week. Special drawing rights, SDRs, fell by 52.
1: Aur ab chale commodities ki aur, Gaura?
0: Haan ji, bilkul.
1: So, pehle crude oil pe nazar dal lete hain.
0: Absolutely. Global crude oil prices fell today on easing supply concerns as more stranded oil tankers exited the Strait of Hormuz. Brent crude was trading over 3.1% down at $72.91 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 2.8% down at $69.90 per barrel when reports last came in. Moving to the commodities market, in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,43,940 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% up at 2,22,350 rupees per kilogram a short while ago.
1: Udhar multi commodity exchange mein taza samachar milne tak August anuband wala sona 0.4% badhkar 1,43,658 rupees prati 10 gram par tha aur July anuband wali chandi 0.9% ki badhat se 2,21,551 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. So, क्या इंडिकेशन दे रही हैं हमें कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस जो इतने नीचे आ गए हैं प्री वॉर लेवल्स के नीचे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है?
2: देखिए, बिल्कुल, जो ऑयल प्राइसेस का नीचे आना तो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है. हालांकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अभी भी 8-10% की बढ़ोतरी ज़रूर बनी हुई है, लेकिन उतना आज की तारीख में मैनेजेबल कहा जा सकता है. जिस गति से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी थी और उसका जो असर हमें देखने को मिला था, उससे बहुत बड़ी राहत है. और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा आसान ज़रूर होता जाएगा.
1: और अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो उसमें आप किस तरह का आगे चलकर यू नो मूवमेंट देख रहे हैं?
2: देखिए, आप पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट देखी गई है, और ये संभावित भी था क्योंकि जिस तरह से सोने, खासतौर पे सोने की अगर मैं बात करूं, प्रीशियस मेटल्स, अगर उनका बिहेवियर जिस तरह से रहता है कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन है तो उनकी कीमतों में हमें उछाल देखने को मिलता है. अब जब क्राइसिस थोड़ी सी ईज होने लगी, इसमें कोई नया पहलू नहीं था, लेकिन अब जो चाल रहेगी, जो मेरा मानना है, सोने और चांदी की जो चाल रहेगी वो बड़ी धीमी गति की चाल रहेगी. ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को शायद ना मिले, और कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को, इससे ज़्यादा गिरावट देखने की उम्मीद शायद नहीं होनी चाहिए. और ये धीमी गति की चाल जो इन इन दोनों प्रीशियस मेटल्स का जिस तरह का बिहेवियर रहा है उसी तरीके से.
1: पर घड़ी तो अपनी ही चाल से चल रही है, तो हमें अपनी चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आप आए और आपने इतने विस्तृत विषयों पर इतनी हमें गहन जानकारी दी.
2: धन्यवाद.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू विशाल. एंड नाउ लिसनर्स, बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, गोल्डमन सैक्स रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फॉर 2026. मेजर एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड स्लाइड. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।

0: हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मनोज सिंह राणा। Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organised by the Narcotics Control Bureau today, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre, NCOD, in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।

0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। इस बीच वेनेजुएला में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में लोगों की जान बचाने के लिए खोज अभियान तेजी से चला रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत कार्यों में सहयोग के बयान पर आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre, NCOD, in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and the mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கேட்ட பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரை கானம். தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே விஷால் சர்மா. मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।

0: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी

0: भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई।

0: इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Cho Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पैनिश भाषा में मित्रता होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान उनका समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight, under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances, valued at around 6,000 crore rupees, will be destroyed. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the 10th annual UK-India Week in London today, Mr. Goyal said that the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to

0: France has confirmed that the US and Iran have agreed to set up a direct deconfliction channel with military representatives from both countries. The arrangement involves representatives from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the US Army's Central Command being stationed in Doha, Qatar. Mr. Vance said in an interview with a British news site that Tehran and Washington have agreed to set up a direct channel in order to reduce the risk of further conflict. Meanwhile, the United States and the Gulf Cooperation Council today reaffirmed their strategic partnership at a ministerial meeting in Bahrain's Manama, underscoring the commitment to regional security, diplomacy with Iran, stability in Syria and Lebanon, and reconstruction efforts in Gaza. Indian shooters have ended their campaign at the ISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes. In badminton, India's Ronak Chauhan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he packed off world number 6 and men's singles top seed Chou Tien Shen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Lee Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. In men's cricket, Ireland defeated India by 34 runs in their first T20 international of the two-match series in Belfast today. Chasing 183 for victory, India were bundled out for 148 with 6 balls to spare. Earlier put into bat, Ireland scored 182 for 9 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर मुख्य समाचार भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य है मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई भारत ने वायुसेना के 2 विमानों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और अब समाचार विस्तार से अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है एक रिपोर्ट
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा
1: वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं बचावकर्मी मलबे में लोगों की जान बचाने के लिए खोज अभियान तेजी से चला रहे हैं कल 7.2 तीव्रता के भूकंप के कुछ ही सेकंड बाद एक और शक्तिशाली 7.5 तीव्रता का भूकंप आया दोनों भूकंप ऊपरी सतह के नजदीक थे देश की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है
3: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता

0: की सराहना की है। सुश्री रॉड्रिगेज ने कहा है कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और राहत कार्यों में भारत के सहयोग की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 2 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इसमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपने रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान के साथ कूटनीति, सीरिया और लेबनान में स्थिरता तथा गजा में पुनर्निर्माण प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। ओमान के पास एक वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अपने जलमार्ग सुरक्षा अभियान को रोक दिया है। इस हमले से ईरान के साथ हुए प्रारंभिक युद्ध विराम की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमरीका के अधिकारियों ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC नौसेना ने आज कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मूज जलडमरू मध्य को पार करने के लिए ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC ने कहा है कि निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग की अनुमति नहीं होगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनात और व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवर इस बचत पर ब्याज ले सकेंगे और भारत में कर मुक्त भविष्य निधि में जमा करा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है।
2: भारत UK समझौता एक व्यापक समझौता है। यह केवल शुल्क, मूल नियमों या वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी शामिल करता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सर्वोत्तम क्षमताओं और विशेषज्ञता को एक दूसरे के साथ साझा करना है। यह एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और पूरी तरह संतुलित समझौता है।
1: भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी

0: सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सहित तीन महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चाउ तियेन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तुंग सियू टोंग को, रक्षिता ने चैन सुयू को और देविका ने थाईलैंड की टैंड्रुग साईहेंग को पराजित किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 विमानों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. India, along with 34 nations, sign US-led initiative to build resilient AI supply chains. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Zhou Tiancheng of Chinese Taipei to enter quarterfinals. Kidambi Srikant, Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sihag also reach quarters. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAX Silica Summit in Washington. US Under Secretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said 35 nations signed the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Speaking to the media, Mr. Hellberg said, the United States is excited to deepen its partnership with India, describing the bilateral relationship as one of the most consequential of the 21st century.
3: We're incredibly excited to partner with India. India was one of the first top 10 countries to join PAX Silica. The US-Indian relationship, we believe, is one of the single most consequential bilateral relationships in the world in the 21st century. We were able to cover a lot of very timely issues in our bilateral exchanges with India yesterday, including on the Quad, on the Trust Initiative, and we're really, really excited to have India along with so many representatives of the Indian business sector at this summit.
2: India was represented at the summit by Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology S. Krishnan and representatives from Indian industry. India had joined the initiative in February this year on the sidelines of the AI Impact Summit held in New Delhi. In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 589. Nearly 3,000 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In capital Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, several people are still feared trapped under the

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को
1: सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है।

वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திரைக்கோணம் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से

0: भेजे हैं।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सीईटीए के साथ अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लंदन में आयोजित एक व्यापार सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत से आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को गति देने तथा साझा समृद्धि के लिए अधिक महत्वाकांक्षी निवेश करने का आह्वान किया। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य

0: Mohammad Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिन के सेशल्स के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के दो जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वीं यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय

0: ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच निकट संपर्क में निहित रहा है। प्रमुख समुद्री सहयोगी देश के रूप में सेशल्स का स्थान क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास के भारत के महासागर दृष्टिकोण में विशिष्ट है। अविकसित देशों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में भी वो भागीदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे।

0: इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वामित्व के लाभ प्राप्त होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 के अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रॉड्रिक्स ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 sarathis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement.